संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छठ बह करवार सबको पूरा आपे होवे खटना कोई आखे पतवरवाणा पिछे पाई ता नानक तो ले जापे।

0: रहा। जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सित सवालियो, जिन कीती सो पार पिया। कहो नानक करते कियां बातां, जो किश करना सो कर रहा महला दूजा।
1: योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण क्षत्रिय शब्दं शूर शब्दं शूद्र शब्दं प्रकृत सर्व शब्दं।

तृतीरथ चते का जोर ग्रथ बाहो द्वापर रथ तपे का सत ग्रथ बाहो कलयुग रथ गण का कूड़ ग्रथ बाहो महला पहला।

सुचासो भीमसेन सलाहिए भगर तुचार नानक तिमुख जले ते सच्चे दरबार पड़ी सकवा।

पशु मरै दस काज स्वरै अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं मैं क्या जानूं बाबा रे हाड जले जैसे लकड़ी का तूला

अमृत शाड बिखै बिख खही माया मोह परम पै भूले सुत दारा सो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनेहु गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास बात कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की

जुगो जुग अटल, दीन अर दुनी दे मालक, सर्वरे कायनात दे सांझे रहबर, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन अस्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यार वाले सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है। अपने पावन चरणा कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वालेओ, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोज़ाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तो सरवण कर दियां हो, वो चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तो पहला सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन, अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखन। सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द गुरबाणी दी विचार सतगुरु आप करवा लैन और आप सरबत संगत असीस बख्शो। कोई रसना वांझी ना रहे, दोवे हथ जोड़ अपनिया मन बिरतियां एकागर करदियां लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी। अदब सहत सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और मिलके आखो जी सतनाम श्री

की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी।

सुत दारा सो प्रीत लगाई उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास।

राजन के राजमा साधु के साजमा जो रूप जोग करिय धर्मशाल के राजन के राजमा साधु के साजमा जो रूप जोग करिय धर्मशाल खंड बेहंडम खल दल खंडंग अतरण मंडंग वर बंडंग कुज दंडे खंडंग तेज प्रचंडंग ज्योते मंडंग सुख संता करणंग दुर्मत धरणंग किल विक हरणंग।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵਣ ਸਦੀਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨ ਦੇਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜੈਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪ੍ਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੇ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਰ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁੱਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੀ ਠਾਕੁਰ
कहे मन पौ क्रिया, ऊडे ऊड़ आवै सैकों सां, तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवण खलावै कवण चुगावै, मन में सिमरन क्रिया। सब निदान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना परा भरिया। सब निदान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना परा भरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर गम्मा गम्मा पारा, सब तियाँ वहीं सब तियाँ वहीं तुद जी, हर सच्चे से जनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जियाँ का दातारा, हर तिया वोह संतो जी, सब दुख विसार नहारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू कट कट यंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बिडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेव हैं तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर तिया वहीं हर तिया वहीं तुद जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पाए, जैना हर तिया जी, तिन टूटी जमकी फांसी, जिन निरभौ जैना हर निरभौ तिया जी, तिनका भौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप सुमासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे व्यंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करें हर पूजा जी, तप तापहीं जपहीं बयंता, तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया कट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावें मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई, तुदे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहें सो होई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सिका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साईं,
जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा कहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुगवाया, तुदया बिछोड़या आ मिलाया। तू दरिया हो सब तुझी माहें, तुझ में दूजा कोई नाहें। जी जन सब तेरा खे, विजोग मिल बिछुड़या संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद मिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ भाईले निवासा। पानी पाव कतिन्हे किया, पंकजो मोह पग नहीं चाले। हम देखा तहें डूबी अले, मान एक न चेतस मूड मना। हर विसर तेरे गुण गलिया रहो, ना हो जती सती नहीं पड़या। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा। जैना तू नाही विसरया, आसा महला पंजवा। भई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संज्ञा लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माहया कह रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करोहा दे रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो। आप हाथ दे मुहे बचाव हो, सुखी वसे मोरो परवारा। सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सवेरन को आय संग्रिय, पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छा कोई अवर ना त्याऊं। जो बर चहाऊं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखा मार तारिये। चुन चुन शतर हमारे मारी है,
आभाद मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय हो जो सदा हमारे पक्षा श्रीअस्तु जो करिहो रक्षा राख लियो मोहे राखण हारे साहेब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दसकंता काल पाए ब्रह्मा बापतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है तहें हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आद्यंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी शिव कन को शिवगुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो कटकट गए अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख बाए ते दुही सुख बाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने कट कट के पढ़ पढ़ की जाने जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्क करत हों कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धार सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझो चारे तुम सब ही ते रहत नरालम जानत वेद भेद अर आलम रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनीन अनाद असंभ ताका मूड़े उचारत पिता जाको पीव ना पावत बेदा ताको कृपाहण अनुमानत महामूड कछ पीद ना जानत महादेव को कह सदा शिव ड्रंकार का चीनत न है पिव आप अपनी बुध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंड जे रसे तज कीनी उतपज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवै बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दखाए अचंभव अजुगा स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्यो बार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण गाता जे आस तुझे तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे
जो कल को एक बार ते है ताकि काल निकट न है रक्षा हो ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कला कृपा दृष्ट तन जहे न हरिओ ताकि ताप तनक मय हरिहो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे ओबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दर्द दुष्ट दोख तेरा खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर उठो मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर ठोर मोह हो सहाय दुष्ट दोख दे ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखन्याओ दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के गयो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा रामकली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सह सेती मनवजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कर सब सवारना सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो वसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किच है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाहा तेरी नाम मन नमसावे नाम जिनके मन वस्या
वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा सच नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जैनों भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसिया जैनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहों जिस दिया एहे वड़याइया कहे नानक सुनहो संतो शबद हरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो पाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुदवास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तैसक होआ तित कर अन्न हद बाजे आनंद सुनहो वड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा परहुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा परहुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदा मणि महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को भुंजै तिसका हुए उधारो एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनौ जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थी वै

दोहरा आज्ञा परी अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभ को मिल बोच है। राज करेगा खालसा, खुआर होए सब मिलेंगे, खुआर होए सब मिलेंगे।

परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुर इतिहासक विचार धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे होए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा विच जुड़न दा यतन करिए। सभना दियां हाजरियां गुरु पातशाह जी दे पावन चरणा विच लग जाण। आप जी रोजाना इस अस्थान तो श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दे राही कवि संतोख सिंह जी दे द्वारा दशमेश पिता अमृत के दाते सरबंश दानी बादशाह दरवेश शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन इतिहास नूं लड़ीवार सरवण करदे आ रहे हो। आनंदपुर साहिब जिथे बेअंत सिख संगतां गुरु महाराज दे चरणां विच आ के जुड़दियां बाणे और बाणी दे रंग दे विच रंगदियां हन निम्रता और प्यार दे नाल भिज के जो सतगुरु जी दे दर ते आउंदा है। सतगुरु महाराज जी उन्हों गलवकड़ी दे विच लै के बेअंत बख्शिशां महाराज जी दिंदे हन, पर जे कोई अहंकार दे विच चढ़ के आउंदा है और अपने होमे का प्रगटावा करता है कि मैं हाँ, फिर सतगुरु महाराज जी उस ढंग दे नाल उहदे नाल मिलाप करते हैं। ये साडे ते डिपेंड करता है कि असी गुरु महाराज दे दर ते किस भावना नूं लैके आए हाँ, क्योंकि जिद्दां दी साडी भावना होएगी फल भी उस तरह का ही मिलेगा। बाई धार दे राजे राजा भीम चंद कहलूरी राजा अहंकार दे नाल भरिया होया होमे का प्रगटावा करदा कि मैं हाँ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं आनंदपुर साहब तो बाहर करना चाहुंदा और आनंदपुर साहिब दे उपर कब्जा करना चाहुंदा है। पहले भी बहुत वड्डी जंग होई, सफलता नहीं मिली, फिर दोबारा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं लोहगढ़ दे किले विचों बाहर कीता, वो भी धर्म दे नाम दी सौं खा के कि तुसी आनंदपुर साहिब नूं छड्ड दिओ, असी तुहाडे नाल कोई झगड़ा नहीं करांगे। पर जदों पता लगा भी महाराज जी लोहगढ़ दे किले तों बाहर आए, उस वेले बाई धार दे राजे ते इन्हां दे सिपाहियां ने गुरु पातशाह जी और गुरु के खालसे दे उते हल्ला बोलिया। एक बार फिर इन्हां नूं काफ़ी भारी मात्रा दे विच नुकसान होया, पर इस बार इन्हां नूं जिहड़ा सहयोग मिलिया सूबा सरहंद वजीर खां जो अपनी सेना लैके पहुंचिया है,
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਏ, ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨੇੜੇ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ

सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे बहुत वड्डी है। सतगुरु कृपा करन असीसां देवो भगत करेवो मिलिया का क्या मेलो। गज वज के असीस बख्शो जी, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तुझ बिन कवन हमारा, तुझ बिन कवन हमारा। इतनी कुछ सेवा प्रवान करनी जी, दिता गया समा समाप्त है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बख्शिश करते हैं भाई, जिहड़ा इस दर दा हो जाता है ना, उन्हूं होर किधरे किसे दर ते झुकन की लोड़ नहीं पैंदी। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा, सतगुरु कृपा करन। क्योंकि अज जिस दिन कलगीधर पातशाह जी ने बिपौर साहब नंगल डैम की धरती, आनंदपुर साहब की धरती ते चौपाई साहब उच्चारण की, अज का वो दिहाड़ा है। सतगुरु कृपा करन बहुत महंगे मुल की सरदारी कलगीधर पातशाह जी ने सानू लै करके दिती। आख्या हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपार। बेनती रूपी चौपाई सच्चे पातशाह कहिंदे भाई जिहड़ा एक चित ला करके एक वारी पढ़ लवे ना, सुने गोंग जो याहे सरसना पावई, सुने मूड़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकटना ते नर के रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कहे। सतगुरु कृपा करन साढ़े सारियां दे मना अंदर ऐसी बाणी वस जाए। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे ए लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। आओ आनंद साहब दा जाप। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन प्रबंधक कमेटी दा प्रधान साहब जी, समुची मैनेजमेंट कमेटी, गुरु के वजीर साहबान, ग्रंथी साहबान, सारिआं दा धन्नवाद, कोटान कोट शुकराना। धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दा। आओ आनंद साहब दा जाप उपरंत समाप्ति है। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार।

सगल समग्री तुमरे तुमते हो ऐसो तुमरी गात मित नानक दास बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दशमी प्रेथ

हाय अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण तैठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरय कर नौ निदाविताय सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी।

नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सत गुर सेवे ओ जिस

सुख सुह लड़ा त्याहु गुरमुख हर फल पावहु गुरमुख फल पावहु हर नाम त्याहु

सच तेरे खंड सच्चे ब्राह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे अकाल सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दी बाण सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तेरा अख ते लाख करोड़ सच्चा सब दान सच्चा सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच तै सच जो मर जम्मे सो कच कच महला पहला।

0: शब्द सुनाया है, सतगुरु देवदाता को सच मूलक सुनाया है, सतगुरु ने सच पाया, जिन चुनाव लगाया, जिन सच सच बताया, सच सच
1: असमहल चौथा तहन तहन गुरु।

मुसलमान सब शरीयत पढ़ पढ़ कर विचार बंदे से जे पभे विपंदी व्यक्त को दे दो सलाह सलाह दर्शन रूप पार तीर्थ ना व्यर्था पूजा अग्रवास बैकार जोगी सुनते आवंजते लख नाम करता।